2020 को 91 वर्ष की आयु में भोपाल स्थित अपने निवास पर उनका निधन हो गया। वो लंबे समय से अस्वस्थ थे। उनके जाने से उर्दू शायरी का एक ऐसा अध्याय समाप्त हुआ है जिसकी गूंज आने वाली पीढ़ियां भी महसूस करती रहेंगी। 15 फरवरी 1935 को अयोध्या में जन्मे डॉक्टर बशीर बद्र ने अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय से उच्च शिक्षा प्राप्त की। वे शिक्षक, विद्वान और सबसे बढ़कर एक ऐसे शायर थे जिन्होंने गज़ल को आम लोगों के दिलों तक पहुंचाया। उनकी शायरी में न शब्दों का आडंबर था, न भावों की जटिलता, बस जीवन की सच्चाइयां थीं जो सीधे दिल में उतर जाती थी। उनका एक मशहूर शेर आपको याद ही होगा, कोई हाथ भी न मिलाएगा जो गले मिलोगे तपाक से, कोई हाथ भी न मिलाएगा जो गले मिलोगे तपाक से, ये नए मिजाज का शहर है, ज़रा फासले से मिला करो। क्या बात है, यादों की बात हो और बशीर बद्र का जिक्र ना आए, ऐसा कैसे हो सकता है। उन्होंने कहा है, उजाले अपने यादों के हमारे साथ रहने दो। ये मेरा पसंदीदा शेर है श्रोतागण, उजाले अपने यादों के हमारे साथ रहने दो, न जाने किस गली में जिंदगी की शाम हो जाए। क्या बात कही, रिश्तों में संवाद और इंसानियत की गुंजाइश बनाए रखने का संदेश देते हुए उन्होंने ये भी कहा, दुश्मनी जम कर करो लेकिन ये गुंजाइश रहे, दुश्मनी जम के करो लेकिन ये गुंजाइश रहे, जब कभी हम दोस्त हो जाएं तो शर्मिंदा ना हो। और उनका ये कालजयी शेर, आँखों में रहा दिल में उतर कर नहीं देखा, आँखों में रहा दिल में उतर कर नहीं देखा, कश्ती के मुसाफिर ने समंदर नहीं देखा। बशीर बद्र साहब की शायरी किताबों तक सीमित नहीं रही, उनके शेर लोगों की बातचीत का हिस्सा बने, मुशायरों की जान बने और जीवन के सुख दुख के साथी बने। ये किसी शायर की सबसे बड़ी उपलब्धि होती है। आज जब हम उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं तो महसूस होता है कि शायर भले ही दुनिया से विदा हो जाए लेकिन उसके शब्द अमर हो जाते हैं। उन्होंने बहुत सारे गीत भी लिखे, गज़लें लिखीं बॉलीवुड के लिए। आपको उनका एक बहुत प्यारा गीत सुनाएंगे जिसे जगजीत सिंह जी ने अपनी आवाज़ दी। और ये गीत के साथ ही दर्पण हिंदी रेडियो परिवार की ओर से महान शायर डॉक्टर बशीर बद्र साहब को विनम्र श्रद्धांजलि। उन्होंने कहा है, उजाले अपनी यादों के हमारे साथ रहने दो, न जाने किस गली में जिंदगी की शाम हो जाए।

0: Every Sunday, listen to the Hindi show, 98.5 FM, Radio 2000.
1: हर रविवार सुनिए दर्पण हिंदी कार्यक्रम 98.5 FM पर सुबह 9 से 11 बजे तक।
2: भाई साहब, ये करी मास्टर्स और अन्य मसालों में क्या अंतर है?
3: बहन जी, करी मास्टर्स कंप्लीट करी मिक्स है। इसमें आनियन, गार्लिक, जिंजर, टमाटर, नमक, मिर्च, हल्दी, धनिया वे सभी मसाले मिले हुए आते हैं। ये बनाने में बहुत ही आसान और खाने में लाजवाब है। इट्स सो इजी। इनकी वेबसाइट का एड्रेस है www.currymasters.com.au।
4: ये था हमारे स्पॉन्सर करी मास्टर्स का संदेश। और श्रोताओं, हमारा पहली अभी भी जारी है और आप जो है हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में अपना कमेंट्स भेज सकते हैं दो टिकट के लिए जो शो है गाता रहे मेरा दिल।
5: बहुत अच्छा कंपटीशन है सुनील जी, बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं और बहुत अच्छा लग रहा है। श्रोताओं, रेडियो ऐसा ही होना चाहिए, इंटरैक्टिव, कि हम आपस में बात करें, तब फिर मज़ा आता है कार्यक्रम की तैयारी करने में। और जो हमारे अतिथि आते हैं उन्हें भी बहुत अच्छा लगता है कि इतनी दूर से वो आते हैं, हमसे इतनी अच्छी अच्छी बातें करते हैं, तो आपके कमेंट्स जो हैं उन्हें और प्रोत्साहित करते हैं। श्रोताओं, एक सूचना है हमारे पास कुटुंब ऑस्ट्रेलिया की। कुटुंब ऑस्ट्रेलिया ऑर्गेनाइज कर रहे हैं इंटरनेशनल योगा डे 2026। तारीख है जून 28 जून 2026 को योगा डे मनाया जा रहा है, 7:30 AM to 10:30 AM। ये फ्री इवेंट है। स्थान है हार्वी लो पवेलियन, डोरन ड्राइव, कासल हिल। आपका इसकी और जानकारी जो है वो दर्पण का फोरम है, उस पर ये फ्लायर हम डाल देंगे, आप और जानकारी ले सकते हैं। तो भारी संख्या में इसका लाभ उठाएं इंटरनेशनल योगा डे में। आप टिकट्स के लिए जो है रजिस्ट्रेशन करना होगा, टिकट्स के लिए आप जाएं कुटुम्बियाड, KUTUMBIYD, सो कुटुम्बियाड 2026.eventbrite.com, इस पे जाके आप और जानकारी ले सकते हैं, रजिस्टर कर सकते हैं या टिकट ले सकते हैं। तो इंटरनेशनल योगा डे जून 28, 2026 को मनाया जा रहा है कुटुंब के द्वारा 7:30 to 10:30 AM। तो ये जानकारी थी। आइए एक और गीत सुनते हैं सुमन कल्याणपुर जी का।

0: looking for personal or business tax or self-managed super fund accounts and audit, formation of association, company or trust, cloud accounting with payroll solution with fixed prices. Mention The Open Radio and get your first visit without any charge. Please contact Forbes Accounting on 8095-9405. That's 8095-9405. Or visit our website, www.fabc.com.au. Our address is Suite 1, 168 Burwood Road, Burwood. Forbes Accounting and Business Consultants are proud sponsors of The Open Radio.
1: You can listen to community announcements and sponsorships on our website, dapanradio.org.au.
2: आप हमारी सामाजिक सूचनाएं और स्पॉन्सर्स के संदेश हमारी वेबसाइट dapanradio.org.au पर देख सकते हैं।
3: श्रोताओं, हमारे अगले अतिथि हैं मंजू मित्तल जी, स्क्रीन ऑस्ट्रेलिया से। जब तक वो यहाँ नहीं पहुँचती हैं स्टूडियो में, आपके कुछ टिप्पणियाँ मैं पढ़ना चाहूँगी। तो सबसे पहले क्षमा मांगूंगी अनीता पंडित जी से, उनका सवाल मैं पूछ नहीं पाई। डू यू नीड टू बी गुड एट मैथ्स और द न्यूमरोलॉजी कोर्स? तो इसका जवाब जो है सुरुचि जी ने आगे दे दिया है, थैंक यू उसके लिए। कुछ और सवाल हैं कि राजीव निगम जी लिखते हैं, थैंक्स दर्पण फॉर अरेंजिंग सच अ नाइस लेक्चर ऑन न्यूमरोलॉजी, कन्वे थैंक्स टू सुरुचि जी ऑल्सो। उसके बाद जो है सुरुचि जी ने अपना नंबर दिया है, आप जुड़ सकते हैं और जो है उनसे और जानकारी ले सकते हैं। शैलजा जी ने लिखा है, ऋचा जी इस भावभीनी श्रद्धांजलि बशीर बद्र जी के लिए हम सभी भारतवासियों की ओर से असीम कृतज्ञता का प्रमाण है। तो आपके कमेंट्स आ रहे हैं, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि आप सुन रहे हैं और इन्जॉय कर रहे हैं दर्पण रेडियो को। आइए सुनते हैं एक अगला गीत।

0: श्रोताओं, आज हमारे अगले अतिथि से आपको मिलाना चाहेंगे। ये बता दूं श्रोतागण कि मंजू मित्तल सिडनी का एक जाना पहचाना नाम और सम्मानित नाम है। स्क्रीन ऑस्ट्रेलिया के माध्यम से वो वर्षों से हमारे लिए उत्कृष्ट सांस्कृतिक और मनोरंजन कार्यक्रम प्रस्तुत करती रही हैं। भारत के अनेक प्रसिद्ध नाटक, संगीत कार्यक्रम और कलाकारों को सिडनी तक लाने का श्रेय उन्हें जाता है। साथ ही साथ उन्होंने स्थानीय कलाकारों को भी एक सशक्त मंच प्रदान किया है। इस कड़ी में इस बार वो सिडनी के संगीत प्रेमियों के लिए एक विशेष रफ़ी शो लेकर आ रही हैं। इस कार्यक्रम से जुड़े कलाकारों, एंकरों और कवियों से आपको रूबरू कराने का सिलसिला भी जारी है। आज हम आपको मिलवाने जा रहे हैं इस कार्यक्रम से जुड़े एंकर और सिडनी के प्रतिष्ठित कवि इंद्रजीत सिन्हा जी से, इंद्रराज सिन्हा जी से। और केन सिंह हमारे साथ जुड़ रहे हैं दर्पण हिंदी रेडियो पे। आइए उनका स्वागत करते हैं और उनका परिचय आपसे कराते हैं। तो इंद्रराज सिन्हा जी और केन सिंह जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है दर्पण रेडियो पर। नमस्कार। तो सबसे पहले जानते हैं इंद्रराज सिन्हा जी के बारे में, जो बहुत अच्छे कवि भी हैं मैंने सुना है। तो आप अपने बारे में हमारे श्रोताओं को बताइए कि भारत में आप कहाँ से हैं, कब आना हुआ सिडनी, और कविताओं की भी यात्रा बताइए।
1: मैं लखनऊ शहर से
0: जी,
1: और मुझे सिडनी आए हुए मेरे ख्याल से शायद 30 साल हो गए।
0: अच्छा।
1: मैं यहाँ पर अपनी मास्टर्स की पढ़ाई करने के लिए आया था।
0: क्या बेस है आपकी आवाज़ में, पहले तो मैं आपको टोक कर कहना चाहूँगी।
1: बैचलर्स मैंने लखनऊ यूनिवर्सिटी से करी, उसके बाद मैं मास्टर्स करी यहाँ से।
0: अच्छा।
1: और मैं अमेरिकन कंपनी में काम करता हूँ।
0: अच्छा।
1: सिस्को
0: जी।
1: एंड आई बीन देयर फॉर लास्ट 20 इयर्स ना। और मेरे ख्याल से वॉइस ओवर्स और कविताओं का शौक है
0: जी।
1: और थोड़ा बहुत लिखता हूँ।
0: अच्छा।
1: बट जो लिखता हूँ वो बहुत आजाद ख्याल लिखता हूँ, तो मैं अपने आप को एक प्रोफेशनल कवि तो नहीं कहूँगा
0: जी,
1: बट थोड़ा बहुत कुछ क्रिएशंस करता हूँ
0: जी। नहीं, मुझे ये बताया गया था कि आप बहुत प्रतिष्ठित कवि हैं और बहुत अच्छा लिखते हैं, तो हम चाहेंगे कि श्रोताओं को आप अपनी कुछ कविताएं सुनाएं। लेकिन सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि स्क्रीन ऑस्ट्रेलिया जो ये रफ़ी शो ला रहा है उसके बारे में, और जिसका श्रेय जो है वो केन सिंह को भी जाता है। तो केन जी, आप बताइए कि कैसे ये शो आ रहा है और कौन इसे जो है लीड कर रहा है इस शो को?
2: मेरी बड़ी खुशकिस्मती है, मैं रफ़ी साहब को पर्सनली कई बार मिला हूँ।
0: अच्छा।
2: लंदन में जी, मैं पढ़ता था, माय कज़न।
0: आप थोड़ा माइक के करीब आइए केन जी, और अपने बारे में पहले तो थोड़ा बताइए कि भारत में आप कहाँ से हैं, कब आना हुआ सिडनी, और फिर रफ़ी साहब के बारे में सुनेंगे।
2: मेरी पैदाइश दिल्ली की है जी।
0: जी।
2: एंड आफ्टर डूइंग माय यूनिवर्सिटी आई वेंट ओवरसीज
0: जी।
2: तो माय जर्नी फिर अफ्रीका, जाम्बिया, लंदन।
0: अच्छा।
2: 81 में मैं ऑस्ट्रेलिया आया जी। हाँ। विद माय यंग फैमिली।
0: बहुत अच्छी बात। और रफ़ी साहब से आप इतनी बार मिले तो आप बहुत भाग्यशाली हैं।
2: सचमुच में हूँ
0: जी। तो उस बारे में बताइए कुछ।
2: मेरा कज़न है, वो लंदन जब रफ़ी साहब आते थे
0: जी,
2: उनका नाम है नरेंद्र काका, तो वो उनके साथ ट्रैवल करते थे, रफ़ी साहब के साथ, किशोर जी के साथ। तो रफ़ी साहब आते थे, मुझे फ़ोन आया था मेरे कज़न का, भैया आओगे
0: जी?
2: तो पढ़ाई छोड़ के, सब कुछ छोड़ के मैं रॉयल एल्बर्ट हॉल
0: पहुंच जाते थे। आप
2: बहुत जाता, जब भी आते थे हम जाते थे जी,
0: जी।
2: तो वहीं से फिर सफ़र शुरू हुआ। ग्रोइंग अप सब रफ़ी साहब के गाने तो सभी को जहन में अभी तक घूमते रहते हैं, तो मेरा सौभाग्य था कि मैं उनको पर्सनली भी मिलता था जी,
0: जी।
2: तो बस ऐसे सिलसिला चला। तो मंजू जी से मैंने गुजारिश की कि उनको ऑस्ट्रेलियंस को भी सुनना चाहिए उनकी आवाज़, वो तो थे नहीं, उससे सबसे मिलती जुलती आवाज़ ये प्रसन्न राव जी की लगी मुझे। तो उनसे मैं पर्सनली कांटेक्ट किया, मंजू से रिक्वेस्ट की
0: जी,
2: तो मंजू जी ने फिर वो कर दिया।
0: तो ये बहुत अच्छी बात कि जो है रफ़ी साहब की आवाज़ तो अमर है,
2: अमर है,
0: लेकिन आप जो है उससे मिलती जुलती आवाज़ प्रसन्ना राव, जो मुझे मैंने सुना उनको उनके कुछ क्लिप्स देखे और बहुत ही मिलती जुलती आवाज़ है।
2: आंखें बंद करके सुनेंगे आप तो आप यकीन
0: तो झलक आएगी रफ़ी जी,
2: यकीन नहीं करेंगे कि इनकी जो टोन है
0: जी,
2: उनकी जो लहर है, जो फीलिंग है, जो इमोशन है
0: जी,
2: मैंने और वो नहीं सुना भी।
0: बहुत अच्छी बात। आइए हम इंद्रराज जी से पूछते हैं कि आप बताइए कि स्क्रीन ऑस्ट्रेलिया जो ये रफ़ी शो कर रहा है, और ये तो हमने उद्देश्य जान लिया कि भाई क्यों हम ये शो कर रहे हैं, क्योंकि हम रफ़ी साहब की अमर आवाज़ को सुनना चाहते हैं, लेकिन आप बताइए कि ये कार्यक्रम पहले तो कहाँ हो रहा है, कब हो रहा है, और फिर इसके बारे में कुछ बातें बताइए।
1: सो स्क्रीन ऑस्ट्रेलिया प्रोडक्शन ये रफ़ी फॉरएवर का जो प्रोग्राम कर रहे हैं ये रीजेंसी फंक्शन सेंटर में कर रहे हैं ऑबन में
0: जी,
1: और ये 14 जून को हो रहा है।
0: अच्छा,
1: 6 बजे से। और मेरा ये सौभाग्य है कि मैं दोबारा स्क्रीन ऑस्ट्रेलिया के साथ जुड़ा हूँ। मैंने पहले भी एक गज़ल का प्रोग्राम किया था।
0: अच्छा,
1: होस्ट, एंड दिस इज़ द सेकेंड टाइम आई एम एक्चुअली गोइंग टू बी होस्टिंग
0: जी
1: दिस इवेंट एज एन एमसी। पर मेरे साथ में इस बार अभिजीत सरकार जी भी होंगे।
0: अच्छा,
1: और वो भी बहुत ख़ास चीज़ें और बातें रफ़ी जी की और बाकी कलाकारों के लेके आएंगे बीच बीच में। इट्स गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग, देयर आर लॉट ऑफ आर्टिस्ट कमिंग, बहुत सारे आर्टिस्ट आ रहे हैं।
0: अच्छा,
1: इन हिंदुस्तान से ऑब्वियसली प्रसन्न राव जी की बात बताया, उनकी वाइफ ध्वनि जो कि बहुत अच्छी सिंगर है
0: जी,
1: विकास गौतम जी आ रहे हैं जो कि सैक्सोफोन पे हैं।
0: अच्छा,
1: एंड एंड ऑब्वियसली हम लोगों के यहाँ के प्रसिद्ध कलाकार अभिजीत सरकार जी, सादिक रहमानी, शर्ली, एंजेला डिसूजा, और एक बैंड है जो कि काफ़ी पॉपुलर है, जज्बा।
0: अच्छा,
1: वो प्ले करेगा, एंड आई थिंक इट्स गोइंग टू बी अ ब्यूटीफुल इवेंट।
0: तो आपने जो लोगों के नाम लिए हैं और जितने बड़े बड़े कलाकार जुड़ रहे हैं इससे, तो ये तो बहुत ही शानदार कार्यक्रम होने वाला है।
1: 100%।
0: तो ये बताइए, हम आपसे कविता तो सुनेंगे ही, लेकिन क्या क्या हमें सुनने को मिलेगा, किस तरह के गीत होंगे, किस तरह का माहौल होगा, हमारे श्रोतागण देखेंगे उसको?
1: सो आई थिंक मुझे लगता है कि ये चीज़ बताना बहुत ज़रूरी है कि रफ़ी जी के बहुत पॉपुलर गाने आप बहुत सारे शोज़ में रेगुलरली सुनते आ रहे हो और आपको सभी जगह पे सुनने को मिलेंगे। आई थिंक मंजू जी का इनिशिएटिव बहुत अच्छा है कि वो चाहती हैं कि उनके वो सॉन्ग जो बहुत लोगों तक नहीं पहुंच पाए हैं,
0: अच्छा,
1: वो पहुंचें।
0: ये तो बहुत ही अच्छी बात है। सच में कितने गीत उनके हम सुन नहीं पाए हैं, हम बस पॉपुलर हैं उन्हीं को दोहराते रहते हैं।
1: तो मेरे ख्याल से ये एक फ्लेवर जो इस इवेंट में हम लोग को देखने को मिलेगा
0: जी,
1: वो शायद बहुत खास होगा।
0: हाँ, तो मैं केन जी से पूछना चाहूँगी और आपके पास लौटूंगी इंद्रराज जी एक कविता सुनने के लिए, लेकिन केन जी आप बताइए कि क्या क्या आपको मुश्किलें हुई इस प्रोग्राम को लाने में, या प्रसन्ना राव जी को यहाँ लाने में क्या क्या दिक्कतें आई?
2: दिक्कतें इनिशियल यही थी, मैं उनको खुद लेके आना चाहता था, लेकिन आई डोंट नो हाउ टू ऑर्गेनाइज
0: जी।
2: तो फिर मंजू जी से मुलाकात हुई, तो ये थोड़े इनको तजर्बा है ऐसे आर्टिस्ट को बुलाने
0: बहुत
2: का,
0: बहुत बड़े बड़े कलाकारों को और बड़े बड़े नाटक लेकर आई हैं मंजू जी एंड स्क्रीन ऑस्ट्रेलिया, तो इनके लिए तो ये चुटकी वाली बात
2: इनके
0: थी।
2: लिए तो तो शी हैज बीन सो गुड इन ब्रिंगिंग राव जी हियर, बिकॉज ऐसे कलाकार यहाँ आते मुश्किल से आते हैं
0: जी।
2: उनकी मार्केट यूजुअली यूएसए होती है या यूरोप होता
0: अच्छा।
2: है जहाँ पे उनके ज़्यादा पॉपुलैरिटी होती है, मोर नंबर्स
0: जी।
2: तो अब ये पहली ट्रिप है इनकी, एंड आई होप इनको पूरा सपोर्ट मिले, एंड वी कंटिन्यू टू डू दिस, आगे से भी मल्टी सिटी टूर्स कराएं इनके हम।
0: अच्छा
2: जी,
0: तो बहुत ही मतलब आपको फिर मुश्किल नहीं आई, बहुत आसानी से जो है
2: मंजू जी है तो मुश्किल नहीं।
0: अच्छा क्या बात कही। तो चलिए आप सुनते हैं इंद्रराज जी से उनकी एक कविता।
1: अपनी कविता सुनाना तो शायद,
0: और मैं ये भी कहूँगी कि मंजू जी ने आपकी भी खोज की है, जो बहुत ही रेयर आवाज़ है, इतनी बढ़िया बेस, और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आपको सुन के, तो आपको भी सुनने श्रोतागण बहुत ही इंटरेस्ट से पहुँचेंगे।
1: बहुत ज़माने पहले मैंने
0: जी
1: एक बार मैं रेडियो शो होस्ट करता था ऑनलाइन, बहुत ज़माने पहले।
0: अच्छा,
1: करीब 15-20 साल पहले
0: यहाँ सिडनी में ही
1: नहीं, कोई अमेरिकन चैनल था, इंडियन चैनल था.
0: अच्छा.
1: उसके बाद से मैंने कभी नहीं किया. एंड देन रिसेंटली आई स्टार्टेड फीलिंग कि हम अपना पैशन फॉलो करना चाहिए. तो थोड़ा बहुत
0: तो कैसे स्क्रीन ऑस्ट्रेलिया से आपका जुड़ाव हुआ?
1: मेरी बेटी श्रीजनी
0: जी
1: से क्लासिकल सीखती हैं.
0: अच्छा.
1: और एक श्रीजनी का एक बच्चों वाला इवेंट हमने पहला होस्ट किया था.
0: अच्छा.
1: एंड आई थिंक वहीं से मुझे शायद आई थिंक मंजू जी से मुलाकात हुई. एंड उन्होंने श्रीजनी ने मेरा इंट्रोडक्शन इनके साथ कराया. और फिर इनका गज़ल का इवेंट जो है वो मैंने उसको एमसी किया था
0: जी. आपको बता दें मंजू जी सबको नहीं चूज करती हैं, सबको मौका नहीं देती है. तो आपको बहुत रेयर होना पड़ता है. तो चलिए अब सुनते हैं आपकी एक कविता.
1: एक कविता है आहिस्ता चल जिंदगी. आहिस्ता चल जिंदगी, अभी कई कर्ज चुकाने बाकी हैं, कुछ दर्द मिटाना बाकी है, कुछ फर्ज निभाना बाकी है.
0: बाबा.
1: रफ्तार में तेरे चलने से कुछ रूठ गए, कुछ छूट गए. रातों को मनाना बाकी है, रूठों को मनाना बाकी है. रातों को हंसाना बाकी है, कुछ हसरतें अभी अधूरी हैं, कुछ काम जो बहुत जरूरी हैं, ख्वाहिशें जो घुट गई इस दिल में उनको दफनाना बाकी है.
0: बाबा.
1: कुछ रिश्ते बनकर टूट गए, कुछ जुड़ते जुड़ते छूट गए. उन टूटे छूटे रिश्तों के जख्मों को मिटाना बाकी है. तू आगे चल, मैं आता हूं. क्या छोड़ तुझे जी पाऊंगा, इन सांसों पर हक है जिनका, उनको समझाना बाकी है.
0: बाबा.
1: तो आहिस्ता चल जिंदगी, अभी कई कर्ज चुकाना बाकी है, कुछ दर्द मिटाना बाकी है, कुछ फर्ज निभाना बाकी है.
0: वाह वाह वाह वाह वाह वाह, क्या बात, क्या बात कही इंद्रा जी.
3: So nice.
0: बहुत ही बढ़िया. चलिए गीत की ओर चलते हैं और फिर वापस हम इस इंटरव्यू की तरफ लौटेंगे. धन्यवाद श्रोताओं, जुड़े रहिए, कहीं भी मत जाइए.

0: contact The Hindi Show for sponsorship and phone 0413 385 976.
1: Darpan Hindi Karyakram mein sponsorship ke liye sampark kare phone number 0413 385 976.
2: करी मास्टर ने कंप्लीट करी मिक्स बनाया फिर उसको घर घर में देखा।

0: हमारे स्पॉन्सर करी मास्टर्स का संदेश। और श्रोताओं, हमारा पहली अभी भी जारी है, लास्ट मिनट। जिन्होंने नहीं अभी तक कमेंट भेजे हैं तो आप भेज सकते हैं, और हम दो टिकट देंगे जो शो गाता रहे मेरा दिल। सो ये 4 जुलाई को हो रहा है, और सैटरडे 6 PM द रिजेंसी फंक्शन सेंटर में। तो आप अपना कमेंट भेजिए, हम दो लोगों का नाम बिफोर एंड ऑफ दिस प्रोग्राम हम आपको बता देंगे।
1: जी हाँ श्रोताओं, आप अपने कमेंट्स भेजिए, बहुत अच्छा लग रहा है। और उसी रीजेंसी फंक्शन सेंटर में जो है मंजू मित्तल जी और स्क्रीन ऑस्ट्रेलिया भी जो शो कर रहे हैं रफ़ी साहब का, उस बारे में हम बातचीत कर रहे हैं। हम जुड़े हुए हैं इंद्रराज सिन्हा जी से और केन सिंह से, जो हमें बातें बता रहे हैं शो के बारे में कि कैसे शो को ऑर्गेनाइज़ किया जा रहा है। तो इंद्रराज जी, ये बताइए कि ऑस्ट्रेलिया में कैसा आपको उत्साह दिख रहा है रफ़ी साहब का जो शो हो रहा है, लोगों को कितना एक्साइटमेंट है, इतनी उनकी फ़ैन फॉलोइंग है। मतलब अभी भी उनकी आवाज़ अगर आप सुनिए या महसूस कीजिए तो ऐसा लगता है कि वो यहीं कहीं आसपास हैं। तो आपको कैसा रिस्पांस मिल रहा है?
2: मुझे लगता है कि रफ़ी जी का नाम लेना ही काफ़ी होता है किसी को उस इवेंट के लिए ट्रैक करने के लिए
1: जी।
2: बट ये इसका रिस्पॉन्स बहुत अच्छा है। मुझे लगता है कि ज़्यादातर टिकटें तो बिक चुके हैं, कुछ सीटें अभी भी बाकी हैं, एंड अच्छा। वो भी बहुत जल्दी जा रही है, 1 हफ्ता रह गया
1: तो श्रोतागण जल्दी करें।
2: तो अगर आपको टिकट लेना है तो आप इवेंट बाबा पे जाएं
1: जी,
2: और वहाँ से टिकट अपना सिक्योर करें, बिकॉज देर आर ओनली वेरी फ्यू सीट्स लेफ्ट राइट नाउ। तो बाकी आई थिंक इट्स गोइंग टू बहुत अच्छा एक धमाल होने वाला है
1: जी जी। तो क्या क्या इस कार्यक्रम में जो है वो लोग देखेंगे? सिंगर सिंगिंग तो होगी ही, रफ़ी साहब के गीत होंगे, इसके अलावा किस तरह का मनोरंजन श्रोतागण को मिलेगा?
2: सबसे जो ख़ास चीज़ होगी कि हम लोग रफ़ी जी की ज़िंदगी के बारे में बहुत कुछ सुनने को मिलेगा। अभिजीत सरकार, जो कि हम लोग उनको एनसाइक्लोपीडिया बोलते हैं, उनको पूरा विकिपीडिया बोलते हैं, नॉलेज बेस उनका इतना ज़्यादा है
1: जी।
2: और वो बीच बीच में साथ में वो हमारे
1: उनकी कमेंट्री
2: भी अच्छा बजा रहे भी रहे हैं, पर वो उनकी कमेंट्री आएगी
1: अच्छा,
2: और वो बताएंगे, और वो मेरे ख्याल से जो है वो उसकी बहुत खास हाईलाइट होगी उस शो की
1: जी। बहुत अच्छी बात आपने बताई। और मैं केन जी से पूछना चाहूँगी कि इतने ज़माने बाद भी रफ़ी जी क्यों इतने लोकप्रिय हैं, उनकी आवाज़ अभी भी इतनी ताज़ी, उनके गीत अभी भी जो हैं वो इतने दिल के करीब क्यों हैं?
3: रफ़ी साहब एक ऐसे सिंगर हैं जो कोई भी एक्टर हो, लगता है शम्मी कपूर गा रहे हैं, रफ़ी गा रहे हैं, एक से लगते हैं
1: जी।
3: देवानंद जी गाएंगे या रफ़ी जी गाएंगे, लगते हैं देवानंद जी गाने। अडेप्टेबिलिटी टू हर एक एक्टर के साथ गाना, उनके साथ साउंड करना, उनके जैसा साउंड करना
1: जी,
3: इट वाज
1: ये उनकी खासियत है,
3: खासियत इनके। आई डोंट थिंक मेनी सिंगर्स कैन डू दैट
1: जी। हां जी, और कैसे प्रसन्ना राव जी इसको जस्टिफाई कर पाएंगे?
3: इनकी जो
1: उनकी क्या खासियत है,
3: ये जो इमोशन है, जो लहर है, बिकॉज सिंगिंग इज समटाइम्स व्हेन यू सिंग इट कैन साउंड वेरी फ्लैट, वो जो उसमें ऊपर नीचे दाव पेच होते हैं, जो फीलिंग होती है, जो इमोशन होती है, एक एक नोट में 3 वेरिएशंस रफ़ी साहब की जो ओरिजिनल थे वो राव साहब में मैंने देखी है बस
1: जी। अभी तक। बहुत अच्छी जी। बात, आप क्या कहना चाहेंगे इस विषय पे?
2: मुझे लगता है कि मैंने भी प्रसन्न राव जी को सुना है
1: जी,
2: उनके क्लिप्स देखे हैं, जैसे शायद आपने भी देखे होंगे। मेरे ख्याल से उनकी क्लासिकल सिंगिंग एक अलग लेवल की है, और
1: ही इज अ ट्रेन्ड सिंगर,
2: इज अ वेरी ट्रेन्ड सिंगर, एंड आई थिंक वो हम लोग को देखने को मिलेगी
1: अच्छा।
2: एंड हम लोग के इट्स एन ऑनर दैट ही इज एक्चुअली कमिंग ऑल द वे, वो आ रहे हैं हिंदुस्तान से यहाँ पर, और अपनी टीम को लेकर और इतने सारे कलाकारों को लेकर, तो बहुत अच्छा शो होने वाला
1: है। चलिए, बहुत बड़ी बात। और लोकल कलाकारों के बारे में बताइए उनसे,
2: लोकल कलाकार
1: उनकी क्या खासियत है और वो क्या लेकर आ रहे हैं?
2: सो हम लोग ने पहला रिहर्सल पिछले हफ्ते देखा, जिसमें कि सारे तो कलाकार नहीं पहुंच पाए क्योंकि अभी इंडिया से टीम पहुंची नहीं है
1: जी जी।
2: बट जो तैयारियां चल रही हैं।

0: आपको जो है आज का कार्यक्रम उम्मीद करती हूँ कि पसंद आया होगा। भरपूर कोशिश रही कि आपका मनोरंजन भी हो और आपको कम्युनिटी से जुड़ी हुई जानकारी भी दें। तो एक बार फिर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दर्पण हिंदी रेडियो से जुड़े रहिए और हमें सुनते रहिए। नमस्कार, धन्यवाद।
1: You have been listening to The Hindi Show. Join us next Sunday to contribute and provide feedback on anything you heard today. Contact us on feedback@dapanradio.org.au.
2: आप सुन रहे थे हिंदी कार्यक्रम। हमें हर रविवार सुनिए सुबह 9 बजे से। अपने विचार भेजिए आज के कार्यक्रम के बारे में। ईमेल कीजिए feedback@dapanradio.org.au।